0: करते आए मुन पापा
1: उपकार आई हो मने नगर गिन तो कुम पापा कोई हो के तो कुम पापा के ताश के तो गोटम मुटोगा ना लग गोटम इस दा अकुम पापा हुआ पंगिया पन
0: हेलो यावाई या ऐसे इमो पापा
1: ऐसे अकुम पापा ना हंटर गरन मिसिंग पा